देन जानो को जरा देन हर जुनो लंगा मकर मकर कात्यो तू कुशलुं कार्तो कहाँ इंकन कारवो ककारी कसुमाने ngayap dringkan cono poro semudro sowan utyo sangking pancoloradyo ingkang sesilih poro srikandi